0: 786-100.4 FM Stereo.
1: आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर

बेशक जब करम होता है तो हालात बिल्कुल बदल जाते हैं. रब करम की हजारों नेमतें हम पर, और हमें उसके हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए. तो अगला कलाम है, खुदा तो सबका होता है.

बेशक रे बंदे क्यों तू रोता है, हमारे दिलों ने हमें थका दिया है, जख्मों को मुस्कुराहट से ढांपते ढांपते हम खुद भी कमज़ोर हो चुके हैं, ख्वाहिशों को दफन करते करते सांसें भी बोझल हो गई है, मगर याद रखे कि हमारे रब कहता है कि तुम मेरी तरफ रुजू हो जाओ, जो मांगना है मांगो, जो गुना बख्शनी है बख्श दूंगा मैं। माशाल्लाह, तो यही है हमारा यकीन तवक्कुल हमारे रब में। मैसेज आया है हमारे असलम साहब और रुखशाना की तरफ से, जो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर्स, स्पेशल ग्रीटिंग्स टू हेडम सचुगली एंजॉयिंग सफियास चॉइस सिलेक्शंस अल्हम्दुलिल्लाह, लव एंड दुआस फ्रॉम रुखशाना एंड असलम, नॉट फॉरगेटिंग सफियास ऑल लिसनर्स एंड ऑल टेक्निकल स्टाफ, आमीन टू ऑल सफियास ब्यूटिफुल दुआस। और फिर मेरी प्यारी दोस्त है जो कहती है कि हमारी प्यारी शाहिदा पाक जो कहती है अस्सलाम वालेकुम एंड माशाल्लाह वेलकम बैक, यू आर ट्रूली मिस्ड ऑन एयर, द सॉन्ग यू जस्ट प्लेड इज सुपर्ब, इट टच माय हार्ट, थैंक यू फॉर ऑलवेज ब्रिंगिंग सच वार्मथ एंड बरकत टू ऑल मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स, सो हैप्पी टू हैव योर वॉइस बैक विद अस, लॉट्स ऑफ लव एंड दुआज एंड दिस कम्स फ्रॉम माय डियर फ्रेंड शाहिदा। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आज है 25 सफर 9 अगस्त 2026, हम बढ़ रहे हैं रबीउल अव्वल के महीने में। तो अगला कलाम है आ गए सरकार आफिया नूर की आवाज़ में।

जी हाँ, ये थे हमारे साबरी साहब, गुलाम फरीद साबरी, जिनकी बेटी साइमा साबरी की कल सालगिरह है। और फिर से रब्बुल आलमीन की बारगाह में यही दुआ है कि रब्बुल आलमीन साइमा साबरी को हमेशा खुशियों से नवाजे और इनकी सेहत तंदुरुस्ती दे और हमेशा खुश खुर्रम रखे और ज़िंदगी लंबी करे, सेहत वाली ज़िंदगी दे और उसका साया हमेशा बच्चों पे रहे। और ख़ास बर्थडे मैसेज है रिहान कोटवाला और फातिमा दूदू के लिए 9 अगस्त के लिए। और फिर शादी की सालगिरह है तैमीना और मोहम्मद हुसैन के लिए 9 अगस्त के लिए। तो इनके लिए भी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनका जोड़ा हमेशा सलामत रखे। मैसेज है मेरी प्यारी बहन फातिमा एडम्स की तरफ से, आंटी गौरी जिन्हें हम प्यार से कहते हैं। शी सेज़ सलाम माय बिलव्ड सिस्टर सुफिया, वेलकम बैक, आई मिस्ड यू, जस्ट टू लेट यू नो आई एम ट्यून्ड इन एंड एंजॉइंग द कवाली, सेफ ट्रेवल्स बैक होम टू यू एंड माई हार्ड वर्किंग टेक्नीशियन। और मेरी प्यारी दोस्त रिहाना रोइकर ने भी मैसेज किया, शी इज़ एंजॉइंग द प्रोग्राम। जज़ाकअल्लाह खैर आपकी दुआओं का और आपकी हौसला अफजाई का। अगला कलाम है भर दो झोली, सबकी झोली खुशियों से भरी रहे और सबकी मुरादें पूरी हो, रईस अनीस साबरी।

खड़ा होकर दुनिया की भीड़ में खो गया हूँ, मगर तेरे आंचल की वो खुशबू आज भी मेरी रूह को सुकून देती है। माँ, तेरी ममता का समंदर इतना

0: क्या सुनी नहीं,
1: सुनी नहीं।
2: बहुत ही खूबसूरत कलाम एक औरत की ताकत के ऊपर जो माँ के रूप में होता है। जी हाँ, अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे और उनका साया हमेशा अपने बच्चों पे रखे। तो चलो अगला कलाम है, आज महफिल जमाएंगे।

0: ओसाकी एक जाम और।
1: जी हाँ, आज महफिल जमाएंगे, कल पब्लिक हॉलिडे है 10 अगस्त जो यहाँ साउथ अफ्रीका में वुमेंस डे के नाम से जानी जाती है, तो अपने लव्ड वंस के साथ आप वक्त बिताएं और दिन का पूरा फायदा उठाएं। अगला कलाम ने लिया है वक्त सब का साथ लेता है।

बेशक लगता था जिंदगी को बदलने में वक्त लगेगा, पर क्या पता था बदलते हुआ वक्त जिंदगी बदल देगा। जी हाँ, इसी पैगाम के साथ मैं सफ़ियत अलवी आपसे रुखसत चाहती हूँ। रात के तकरीबन 9:40 हो रहे हैं। शब्बीर जेकब साहब जो बहुत मेहनत करते हैं और उन्होंने लाल झंडी दिखा दी है, तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फॉर हिज गुड वर्क, फॉर हिज डेडिकेशन, सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क। और आप हमारे सुनने वाले, आपकी दुआएं, आपकी हौसला अफजाई काफ़ी है हमारे लिए। तो इसके बाद आप सुनेंगे अली अली और फिर अपनी मस्ती में मस्त, भूली हुई सदा है दीन के खातिर और खाजा पे एक मनकबत होगा, फिर तुम्हारे बाद और सलामी होगी आरजू बानू की आवाज़ में। ऐ रब, हमें ऐसे तमन्ना से महरूम ना करना जो हमारे दिलों को खुश दे, ऐसे तौबा अता फरमा जो हमारे गम को दूर कर दे, ऐसी तौफीक बख्श दे जो हमारे रास्ते को रोशन कर दे, ऐसी खुशबू नसीब फरमा जो हमारे हुस्न को मज़ा दे, ऐसी बरकत अता फरमा जो हमारे उम्र की साथ दे, ऐसी अमल नसीब फरमा जो तुझ से राज़ी कर दे। अल्लाह, हमने अपने सारे मामले तेरे हवाले कर दिए, बस तू हमें अपनी रहमत में रख दे। इसी पैगाम के साथ मैं आपसे रुखसत चाह रही हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, शब्बा खैर।